0: उम्र पर महका जांदे नी।
1: बहुत
0: लो जी, ये
1: बढ़िया,
0: सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: जी,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जड़ा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तड़ी इजाजत हो
1: जरूर
0: जे।
1: जरूर, आउण
0: हाँ
1: दियो,
0: जी
1: आउण दियो
0: जी
1: जी।
0: जी जी

0: हाय जे तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नी जाना।
1: क्या
0: जे
1: बात है,
0: तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नहीं जाना।
1: क्या बात है।

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा, हथेलियों की हिना या

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

मैनू जानी ना तिला भौकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां दी झल नहीं

0: प्रसंग दी रचना जिहड़ी कि जोगिंद्र पाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे एक शायर ने उन्हां दी ती है सिमी सोत्रा जी ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई एक जिहड़ी रचना लैके हाजिर हो रहे ने। सिमी सोत्रा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोत्रा जी जी आयां
1: लेके असी दिल विच आए आ जुनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी दिल

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

0: ज्यादा बच्चे सोचते नहीं है कि इन्ना जल्दी असीं इंप्लॉयबल हो जाएंगे, या फिर उन्हां नूं अवेयरनेस भी घट रह जाती है, क्योंकि देखो आईटीआई सेक्टर दे विच ज्यादातर साडे जिहड़ा रूरल या कह लिए एरिया दे लोग जिहड़े हैं ज्यादा बच्चे इहदे विच आंदे ने।
1: हाँ जी
0: ते उस तो बाद जिहड़े बच्चे हैं उन्हां नूं इन्नी रूरल एरियाज च तुहानूं भी पता है कि इन्ना इंटरनेट फैसिलिटी कह लो इहो जी ही हुंदी है कि उन्हां नूं नहीं अवेयरनेस हो जांदी हो पाउंदी हैगी वी किहड़ियां पोस्टां ने या असीं
1: जी
0: किहड़ी कंपनियां च जा सकदे हां। वड्डियां कंपनियाज ने, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक दी कोई कंपनी है, ठीक है, तां उहदे विच भी बड़ा इक रहि जांदा है। कुछ इक होर चीज़ भी आ जांदी है,
1: हाँ
0: जिदां
1: जी
0: आईटीआई सैक्टर है मोस्टली ज्यादातर बच्चे जिहड़े हैं आईटीआई कर लेंदे, अपना खुद दा छोटा मोटा काम शुरू कर लेंदे हैं।
1: अच्छा जी
0: ते उन्हां नूं ना एक बैरियर जा हो जाता है कि असीं किसी कंपनी च जाके काम करांगे या
1: हाँ
0: सानू उहदे
1: जी
0: लई फिर सानू अपना पिंड छड्डना पऊगा या फिर सानू उहदे लई अपना जिला छड्डना पऊगा या फिर ओ ए पंजाब छड्डना पऊगा, क्योंकि काफी पंजाब तो बाहर भी इस दियां जिहड़ियां सीट्स ने अवेलेबल, काफी डिमांड हैगी है जिहड़ी,
1: अच्छा
0: तो
1: जी
0: वो बच्चे अपने घरां नूं छड्ड के बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो इस करके अपना इधर ही देखते हैं कि असीं खुद दा काम शुरू कर
1: अच्छा
0: लईए।
1: एक गल दसो भी जिहड़े लड़कियां दे लई इस खेत्र दे विच की भविख हैगा, उन्हां लई किस तरह दे कोर्स ने, कोई लड़के लई विशेष कोर्स ने जां यही कोर्स उन्हां लई हैगे ने?
0: नहीं, लड़कियां दे लिए विशेष कोर्स तां आपां इह कह सकदे हां कि जिवें इत्थे सीविंग दा हो गया, सीविंग कटिंग दे कोर्सेज हो जांदे ने
1: अच्छा जी
0: काफी। हांजी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे विच काफी जांदियां ने कुड़ियां,
1: अच्छा
0: ते
1: जी
0: इक स्टेनोग्राफी इंग्लिश जिहड़ा ट्रेड है उहदे विच इह वी इक कॉमन कोर्स असीं कह सकदे हां
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: कुड़ियां कर सकदियां ने, क्योंकि इहदे विच काफी बच्चे जांदे हैं, गर्ल्स भी ज्यादा मात्रा विच जांदियां ने,
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है। बाकी जिहड़े कोई इदां दा बैरियर नहीं है, जिदां मोटर मैकेनिक हो गया, इदां दे कोर्सेज ज्यादातर मेल्स ज्वाइन करदे हैं, बॉयज ज्वाइन करदे हैं,
1: अच्छा जी
0: बट जिदां सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी
0: इदां दे काम हैगे हैं जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने।
1: काफी
0: तां
1: वधिया, कुड़ियां लई खेत्र वधिया हैगा।
0: हांजी हांजी बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसणी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे?
0: इस खेत्र दे विच ये है कि देखो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां कि जिहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाना चाहुंदे ने, देखो इक चीज तां जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी
0: अपना खुद दा रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओहदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी
0: जिदा जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उहनूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पऊगा, मजबूत रखना पऊगा नाल नाल, क्योंकि ओहदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पऊगा, ओह टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उहनूं अप टू डेट रहना पऊगा वी किहड़े टेस्ट आ रहे ने, उहनां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पऊगा। 2 साल दे दौरान जदों ओहदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा ओहदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेड़े वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदे कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट में ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स हुंदे ने ते आईटीआई, इन्हां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदां कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा इह हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां
1: जी
0: दे लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है
1: अच्छा
0: ना।
1: जी
0: ते जिहड़े बच्चेयां ने मान लो आईटीआई

0: या फिर उद्योगिक खेतर दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उन्हां
1: जी
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है, या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चियां दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करने दे विच ही बेहतरी है उन्हां दी।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: मैडम साहिबाना जी, तुसी बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतों दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतों दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े ही प्यार नाल सुनिया।
0: जी।
1: ते अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखवीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।